loya nyo do chaga pa cha ji hu phum ji ma ga nya nga le thai pho na ko ni lak mai dai le loya nyo ye ni ko ni na byo du loya nyo du thama ye ni yo na lu he nyu ji ko ne yam ti ko lo e nga nim do le thai pho na phi ka tu le loya nyo wo la ne chi la ko ne ye ni ne phe ya thap tan ju la me ye nyo nga ko ne ye ni le ma yu ka de ne jo da ma ye nyo ka pa अब बेम नंगा माने म्योम दुले दाने मा येन्योंगा माने म्योम दुना कोनी स्थानी वितयु कचाय सिय है प्रथे थाय चवा छेमाय सबनंगा प्रचार संपान ती 3 कुम प्रचार संपान येन्यु मैना कोनी सो थो छेमाय लंगा येन्यु ना येन्यु ना हन्या फना कोनी बक मखोल को खुंगा ल येन्यु फना कोनी ए एम ती फाय या सिचे को किलो ह ना फिबु फना कोनी सो थो छेमाय ए एम ती फाय या सिचे को किलो ह ल खुंगा येन्यु ह ना कोनी गा माने जो दु हो ग फ ग पने ना हन्या लंगा ना गने तना दिमा खान ल फादन मा दिमा खान जि न ना को न कलांगा ओसि बला म ति हो थाय फना कोनी वा खान ले लो अनना कोनी छेंगा काया यो निफांगा या कु छेवे हे कोनी मंगेने यो जो ना या दन मे ये न्यू न्यूचि कोनी जगा जे कोलेम थामा ये न्यू गो मकरे मिना तो छाति ब्युम ले बिना मा ये न्यू तो छा ब्युम ना कोनी अनि नो मे या ने छा था गा ये न्यू मंगेले छुन्या ले थाई फोना कोनी मे आ लुम ले रो ये न्यू ति कोरोना दमा ये न्यू